प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनिस आज फीजी विच प्री कॉप क्लाइमेट डिस्कशन ले जा रहे हैं अते स्पोर्ट्स विच रोस्टर्स दी 1 पॉइंट एनआरएल ग्रैंड फाइनल विक्टरी वीकेंड दियां वड्डियां स्पोर्टिंग स्टोरीज विच विचों एक रही। ये सी साड़ी शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक ते हुण चलते हैं जी कि बच्चों नू विंग्स भी दियो घर का दरवाज़ा भी। हाँ जी बच्चों नू विंग्स भी दवो तो घर का दरवाज़ा भी। मैनू ये एक एक्सप्रैशन बहुत ज़्यादा पसंद आ कि पेरेंट्स का काम बच्चों नू रूट्स भी देना है तो विंग्स भी रूट्स तां जो वह जानन कि वह कितों आए ने उन्हां दे वैल्यूज़ की ने ते उन्हां दे अपने लोग कौन ने ते विंग्स विंग्स से गल करिए तां जो वह अपना जीवन आप जी सकन। पर मैं एक तीजी गल भी इत्थे ऐड जरूर करांगी कि एक दरवाज़ा भी ऐसा दरवाज़ा जिस बारे बच्चे जानते होण कि जे कदे जिंदगी विच कोई औखसौख हो जावे ते मैं घर आ सकदा हाँ। घर वापस आउण दा मतलब रिस्पोंसिबिलिटी छड्डणा नहीं हुंदा, इसे तरह मापिया नूं सपोर्ट करन दा मतलब अपनी लाइफ खत्म करना भी नहीं हुंदा। हैल्थी फैमिली सैक्रीफाइस करदियां ने पर नाल नाल बाउंड्रीज भी बनाउंदियां ने, प्यार करदियां ने पर एक दूसरे नूं ग्रो भी करन दिंदियां ने ते सब तों वड्डी गल गल करदियां ने। साइलेंट रिजेंटमेंट किसी भी फैमिली लिए चंगा नहीं, जे कोई गल चुभ रही है तो उसनू 12 महीने दिल विच रख के एक दिन एक्सप्लोजन करने नालों 10 मिनट कामली बैठ के गल कर लो, शायद सामने वाले नू पता ही ना होवे कि तुसी की फील कर रहे सी ते केड़ी गलों तुसी खामोश सी, क्योंकि जिहड़ी खामोशी है उन्नू बड़े ही तरीकों के नाल गैस किया जा सकता, पढ़िया जा सकता है तो हो सकता तुसी जिस गल करके खामोश हो अगले नू उस गल का अंदाजा भी ना हो। सो बहुत जरूरी है कि असी जिहड़ी भी गल नू अपने मन विच खास करके अपनी क्लोज फैमिली क्लोज फ्रेंड्स के नाल कि जिहड़ी गल तुहानू बुरी लग रही है तुसी सोच रहे हो कि असी इस गल नू अपसैट हाँ या सानू डिस्कस करना चाहिए या मैं दूसरे नू इस गल दा एहसास होना चाहिए तो बिना दस्या किसी नू कदे एहसास हुंदा नहीं, जदों अगले नू पता ही नहीं उस गल दा तो फिर एहसास किस तरह होवेगा। सो डिस्कशन जिहड़ी आ हैल्थी डिस्कशन बहुत ही जरूरी हुंदी आ, तुसी डिस्कशन करदे हो या नहीं करदे फैमिली विच फ्रेंड्स विच जरूर दस्यो। और दसन वास्ते नंबर जिहड़ा वह हैगा जी 0434233971 ते तुसी इस प्रोग्राम नूं सुन रहे हो शमा पंगू दे नाल 88.9 विन एफएम तो। सत श्री अकाल मेलबर्न। हाँ जी ते चाह दे कप दे नाल नाल हुण आवाज़ जिहड़ी आ रेडियो दी थोड़ी जी तेज़ कर लो।

पतंजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप हो तो गा रहा हूं मैं, जो जो चाहिए था जिंदगी में सब कुछ पा रहा हूं मैं, बिकॉज आप हो तो गा रहा हूं मैं।

कह गए ना जाने क्यों, रुकते रुकते बह गए ना जाने क्यों। वो मुझसे इतना सब कुछ कह गए ना जाने क्यों, हम फिर भी उनके होके रह गए। वो मेरा दिल भी कट के रह गए, ख्वाब सारे मेरे ढह गए ना जाने क्यों, हम इतना कुछ कैसे सह गए ना जाने क्यों। सच्ची बात ये कंक्लूजन ये है कि हम तो फुद्दू बन के रह गए।